रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके,

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

सितारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Ne yüzüz to ne hemme chicken of verse ek baar dekhi kya karu abhi mauka mil raha hai baar baar mauka mil raha hai mujhe yani ki in dino mein ek baar fir se main subah aayi hu aapse deep sari baat karne ke liye aur kya hai baat dekhi ye azuz ke style mein nahi thoda apne style mein bata deti hu beats on repeat bhi nahi hai it's your whatsapp or what's up with RJ Zeus nahi hai aaj it's with me barabar 2 baje tak Zeus यानी कि आप सोच रहे होंगे कि 2 बजे तक क्यों देखिए अब मिक्स हो रहा है ना आज व्हाट्सएप चिनार बीट्स क्या पता हंगामा भी करने का मौका मिल जाए और मुझे मौके का फायदा उठाना आता है यानी कि मौके पर चौका मारना मुझे भी आता है और मेरी पूरी वाइब और ट्राइब को भी आता है तो जल्दी से शो का ऐसा बन जाइए व्हाट्सएप शो पे आज क्या कुछ होने जा रहा है ना आई एम सुपर एक्साइटेड आप कितने एक्साइटेड है मुझे बताइए शो का ऐसा बन जाइए सौदा बिल्कुल घाटे का नहीं है एकदम चकास तो जल्दी से शो का ऐसा बन जाए 8999904 पर कॉल टेक्स व्हाट्सएप कीजिए और शो व्हाट्सएप का ऐसा बन जाए स्लो

देखिए मेरी वजह से तो क्या चीजें आ चुकी है, मैं बताती हूँ। शो व्हाट्स अप, मैं हूँ और शो चनार बीट्स पे भी मैं हूँ। क्या पता हंगामा मैं वो ऑलरेडी हिंदी चुकी हूँ मैं, क्या पता मैं और असरा मिल के बात करें, मैं बात करूँ असरा बात करे, वो तो आगे मैं बताऊंगी। लाल मैं मिल चुकी हूँ, मेरी पूरी वाइब और ट्राई मिल चुकी है, व्हाट्सअप की लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। एकदम ही सोने पे सुहागा वाली बात, और बातें बहुत सारी होंगी। और कुछ ही समय के बाद हम टॉपिक पे भी बात करने जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली वायरल ऑन व्हाट्सएप पे भी बात होगी कि क्या चीज़ें वायरल है तभी वो व्हाट्सएप पे चल रही है। सो अभी शो का ऐसा बन सकते हैं 8999 0494 WhatsApp कीजिए और शो व्हाट्सएप का हिस्सा बन जाइए।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ, ਆਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਹਮ ਹੈ ਸਾਥ ਸਾਥ। 91.4 ਰੇਡੀਓ ਚੁਨੌਤਪੁਰ ਆਗਾਜ਼ तो कब का हो चुका है और हम बात कर रहे हैं आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो नेशनल हाईवे पे फ्रीक्वेंटली जो एक्सपीरियंस है, दैट्स डिसरप्शन, क्लोजर, और ड्यू टू दैट बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, वही कि रास्ता खुला है, रास्ता बंद है। इट्स नॉट फुल्ली रिस्टोर्ड बट इट्स वन वे ट्रैफिक मूवमेंट, सो बी केयरफुल एंड वी शुड नो लाइट मोटर व्हीकल्स का, हैवी मोटर व्हीकल्स का क्या टाइमिंग है। वो आप जो ट्रैफिक पुलिस का TCU जम्मू, TCU रामगढ़, TCU श्रीनगर से आप संपर्क कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि रूट क्या है और कहां से आपने आज ट्रैवल करना है। अपा तो कर ही नहीं रहे हैं गल छड़ने की, मैं तो यही हूँ आपके साथ। सो फिलहाल आप भी दीजिए साथ, हम हैं आपके साथ। सो फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए यहाँ पर ये ट्रैक फ्रॉम द मूवी हीरो बंदी। मैं हूँ दीवा हीरो तो नहीं, बट हाँ आपने टाइम की, मैं हूँ Queen and the Vibe and Tribe के साथ हूँ मैं आपके साथ। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। मैं हूँ दीवा, सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं तो बस सब कुछ छोड़ के आई स्टूडियो में आपके साथ ढेर सारी बातें कर रही हूँ। एंड आज शो पे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास दिन के बारे में, बिकॉज इट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे, सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट। एंड नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एंड सिंपली मैं बता दूँ, जीत सिर्फ मेडल्स की नहीं होती है, इट्स अबाउट जब हम अपने डर को हराते हैं, जब हम अपने लिमिट्स को तोड़ते हैं और हर दिन कुछ बेहतर सीखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं खुद को। सो इट्स सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स को तोड़िए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत आगे तक हमें लेके जाएगी। सो 29th of August यानी कि आज इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, और रीज़न भी सबसे बड़ा है दैट लेजेंडरी हॉकी जो प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आज है। इस मौके पर आज ये दिन मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, और क्यों, डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड स्पेशली नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। सो मेरे लिए भी यही चीज़ है कि आपको गिव अप क्यों करना है। 8899904904 थैंक्स, व्हाट्सएप कीजिए, शो कैसा बन जाए मुझे बताए। सो हाउ थिंग्स आर गोइंग अप एंड स्पोर्ट्स के लिए what is your message, what's your sort of message you want to convey, and you are like bro ye nahi chahiye, zindagi bahut aage tak leke jayegi aur mujhe karna hai, so mujhe bataiye show kaisa ban jaye। aap sun rahe hottest frequency of Kashmir radio channel 91.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

रंग जाऊं। देखिए मन तो मेरा भी नहीं लगता, पर बात ही तो आपकी और मेरी हो रही है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सो वी नो व्हाट इज़ द थीम एंड इट्स ट्रिब्यूट प्ले मूव, यानी कि जो लेजेंड्स है जिन्होंने नाम कमाया है स्पोर्ट्स में, एक वे बनाया है, उनको ट्रिब्यूट देना है। खेलना है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, कभी भी आगे बढ़ते रहना है, खेलते रहना है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खेलेंगे विदाउट ये सोचे कि अगर हार जाएंगे तो क्या हुआ, हारने के लिए ही खेलो, खेलो तब तक खेलो जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए। इट्स लाइक ये जिद होनी चाहिए और हमें लगना चाहिए कि हमारा तो दिल ही इसके बगैर नहीं लग रहा है, तो ये सेपरेट होना चाहिए कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। और आई बिलीव कि ये चीज़ होकर हम उस चीज़ को वापस पा सकते हैं। जील होनी चाहिए एंड वी विल रॉक ऑलवेज, सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे, थीम भी काफ़ी सिंपल, इट्स ट्रिब्यूट प्ले मूव। आप क्या कहना चाहती हो आज के इस थीम के रिलेटेड, 8899-0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो व्हाट्सएप का हिस्सा बन जाइए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

शोचन और रीत छोटी सारी बातें एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे. आज सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे, इस दिन को मनाया जाता है. सो आज का जो थीम है इट्स अ ट्रिब्यूट प्ले एंड मोर. वी हैव टू रिमेंबर दोज जिन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया, जिनको हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए हज़ारों रास्ते खोले कि हम भी आगे बढ़े और हम अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में देख सकते हैं. मैं तो कहीं नहीं चली आपके साथ हूँ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे. आप भी शो का हिस्सा बनकर अपनी राय मुझ तक पहुँचा सकते हैं. और आप क्या जानते हैं स्पोर्ट्स डे के बारे में एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स प्रमोटिंग फिटनेस, एक्टिव लिविंग एंड स्पेशली वी आर इनकरेजिंग पीपल कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में बांट लें उनकी हेल्थ के लिए, उनका करियर भी आज स्पोर्ट्स में ही वो बना रहे हैं. ऐसी कितनी सारी एग्जाम्पल्स है. सो आपके हिसाब से आज के दिन पे क्या चीज़ है जो हमने लोगों तक पहुंचानी चाहिए, यानी एवरी डे हमें करना चाहिए, बट आज के दिन पे कौन सी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं. 8899049 04 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. देखिए ट्रिब्यूट प्ले मो आज के नेशनल स्पोर्ट्स डे का थीम है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे लिए खेल कूद कितना ज़्यादा ज़रूरी है. हाउ इट्स इनकरेजिंग एवरीबॉडी टू स्टेप इनटू द फील्ड एंड प्ले एट लीस्ट एन आवर. सो ज़रूरी है कि फिटनेस ही नहीं प्रमोट हो रही, इससे हमारा जो माइंड सेट है वो भी बदल रहा है. क्योंकि करियर पहले लोग नहीं बनाते थे स्पोर्ट्स में, बहुत ही से कम लोग थे जिनने वी कैन से जिनने हमारे लिए रास्ता खोला और जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है. बट आज एवरीबडी दे आर लाइक उनका माइंड सेट क्लियर है कि हमें अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो करियर भी सेट है, बहुत कुछ बदल सकता है, हम खेल भी सकते हैं, हमारा पूरा ध्यान एक पर्टिकुलर फील्ड पर रहेगा. Although we are multi-skilled, but still हमारे पास ये चीज़ क्लैरिटी है कि दैट हम एक फील्ड में जिसको स्पोर्ट्स कहते हैं आज उसमें अपना करियर बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, अपने कंट्री का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने आप को इस कदर मजबूत बना सकते हैं कि हम ये सेटिस्फाई हो जाए कि हम सही कर रहे हैं ज़िंदगी में. तो आपके क्या थॉट्स आज नेशनल स्पोर्ट्स डे पे, मुझे बताइए शो का हिस्सा बन जाए बिकॉज इट्स ट्रिब्यूट प्ले एंड मूव. आप भी शो का हिस्सा बनकर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और हम पहुंचाएंगे आपकी राय वहां वहां तक जहां जहां तक पहुंचती है रेडियो चुनार की आवाज़. जल्दी कीजिए शो का हिस्सा बन जाए. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

शूचना और बीच और शो पे बात हो रही थी आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में और आज का थीम था ट्रिब्यूट प्ले मो एंड हम बात कर रहे थे कि क्यों इस दिन को मनाया जाता है। सो आपको बता दूं कि ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है बिकॉज जब हम 29 अगस्त को इंडिया जब मिलके सेलिब्रेट करता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, बट ये भी याद रखिए कि उस लेजेंड को याद किया जाता है जिन्होंने बहुत सारे रास्ते खोले बहुत सारे लोगों के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर ध्यानचंद जी, जिनका बर्थडे आज सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी है उनकी, और स्पोर्ट्स में उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, या फिर ये हम याद रखते हैं कि उनका जो डिसिप्लिन, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस, जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, वो हर एक इंसान को इंस्पायर करता है। एंड स्पेशली थीम की बात करें, इट्स वेरी सिंपल, ट्रिब्यूट प्ले मो, यानी अपने सपोर्टिंग हीरोज जो है उनको हमें ट्रिब्यूट भी देना है, हमें खेलना भी है, एक्टिव रहना है और कभी भी नहीं हारना है। इस चीज़ को हमने याद रखना है और फिट तो रहना है, लेकिन आज हम अपना करियर भी स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। ये उन्हीं लेजेंड्स की देन है जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देकर बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खोला है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। शो चुनार बीट्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं। शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है बराबर। आप 2:30 बजे तक अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, 8 से लेकर 2:30। आज सैटरडे है और सुबह 9:30 से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और एक्स्ट्रा बातें हो रही है। सो आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 8999904904 पर टेक्स व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए आपने फिर से बता रही हूँ मैं, 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: खादिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तक सुनो।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: ओ, मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

जी हाँ दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही ये गाना है यार बेदर्दिया, अरिजीत सिंह की, यू नो, अमेजिंग एंड आई कैन से इमॉर्टल वॉइस, क्या खूबसूरत आवाज है। शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ। सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। लॉट मोर म्यूजिक कमिंग ऑन द अदर वे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड यू गेट ऑल द अपडेट्स, ऑल द लेटेस्ट म्यूजिक आउट हियर ओनली फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा मरने को तैयार है।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

FM रेडियो रेडियो जिनार हर दिल की धड़कन, आज साहिल इन द हाउस। शो का नाम दिल की बात, साहिल के साथ लॉट मोर म्यूजिक कमिंग योर वे। और आज हम बात कर रहे हैं अपने शो पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से। इंडस्ट्रियल सेटअप जो अक्रॉस द कंट्री हुआ है, उससे हमारे जो कंट्री की इकोनमी है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हमारे यंगस्टर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे वेटरन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना डेवलप कर रहे हैं कि बस दिन रात लोग काम में बिजी हैं एंड दे आर सेटिंग अप एग्जाम्पल्स एंड गिविंग एन अमेजिंग मैसेज टू द वर्ल्ड आउट देयर। क्या कुछ हो रहा है सब पे होगी बात। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए ट्रैक, लौट के आऊंगा। सुनते रहिए रेडियो चेन्नई।

अनगही कोई बात है, व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक। और ऐसे गाने आपको एक ही जगह पे मिलते हैं भैया, वो है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर 90.4 एफएम रेडियो चनार। ये है हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ, आज है साहिल इन द हाउस। आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन सम सुपर कूल बॉलीवुड म्यूजिक आई एम प्लेइंग ओनली फॉर यू। स्टे ट्यून्ड, लॉट मोर कमिंग ऑन द अदर साइड।

Chinar Beats with Harshi Diva only on radio. Chinar 90.4 FM.

All right, guys, a lot more music coming your way और enjoy कर रहे थे आप हमारे साथ शो दिल की बात साहिल के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से हुई बात लेकिन यहाँ घड़ी कर रही इशारा इट्स टाइम टू रैप अप दिस शो but music continues on Radio Chennai because this is the frequency जहाँ पे म्यूजिक रुकता नहीं है जी हाँ you can listen us anywhere in the world आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो चना 90.4 एफएम के नाम से ऐप स्टोर से एंड्रॉइड से और दुनिया में आप कहीं भी हो यू आर कनेक्टेड टू रेडियो चनार फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत आज के शो से बट म्यूजिक कंटिन्यू 7 बजे आप सुन पाएंगे सुहानी शाम टिल द टाइम लिसन सम अमेजिंग बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो चनार दीजिए इजाजत कल होगी मुलाकात कल हाँ कल तो संडे है परसों होगी मुलाकात लेकिन कल भी आप हमें सुन सकते हैं बिकॉज रेडियो चनार पे एंटरटेनमेंट की गाड़ी रुकती नहीं है स्टे हैप्पी गॉड ब्लेस यू Take care and Allah Hafiz.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे पूछूं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है मेरे।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबाए। आहा,

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: the heck.
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: एफएम।
3: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम आनंद बख्शी के नाम है।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: भी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूं, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहां तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सारे का दमा पा पा मगा दमा पा पा मरे मागा।
3: हाँ सा

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: किशोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी, हो नटखट, हो खटपट, हो पनघट, हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना, ओ मीठे बैना, ओ तोरे नैना, हाय हाय, मीठे बैना।

0: यतन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की
0: मुश्किल

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का, जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: है।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।